0: को बदल सकता है। तो हमारे देश का जेंजेंजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता, भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेंजी पे पूरा भरोसा है। ये देश आपका है, इस देश के नेताओं को इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश मत करो, समझे?
1: लव स्टोरीज फेड,
2: नहीं बनना है मुझे जिया का पिया।
3: डुंगरपुर मैन आर नॉट कट आउट फॉर मैरिज।
1: स्टार्स मूव ऑन।
3: किसी ने शादी नहीं की, डिड यू नो दैट?
4: यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों में, जहाँ रेत देखते हो आप लोग लेट जाते हो।
1: एंड फ्रेंचाइजेस डिसअपीयर इनटू नॉस्टैल्जिया।
5: हाय, आई एम अंजलि।
6: आई एम मैरिड। आई मीन विनय, विनय मल्होत्रा।
1: हैप्पी। बट एवरी वंस इन अ व्हाइल बॉलीवुड ओपन्स एन ओल्ड डायरी एंड अ फॉरगॉटन रोमांस सडनली बिगिंस ब्रीदिंग अगेन।
7: जो गिफ्ट मैं चाहूंगा वो देना पड़ेगा।
8: आर यू नो बदमाशी?

से जब से मोदी सरकार आई है टोटल हमारे देश में 93 पेपर लीक हुए हैं 93, और इनमें अधिकतर पेपर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बीजेपी की एनडीए की सरकारों में लीक हुए हैं। और अभी पिछले एक दो दिन से खबरें आई हैं, ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है इसका एपिसेंटर भी राजस्थान है, और इनमें जो दो चार लोगों के ऊपर सुई गई है वो भी बीजेपी के नेता दिखाई देते हैं। तो इससे शक तो पैदा होता है कि क्या इन सारे पेपर लीक में इनके नेता शामिल हैं, या इनकी पार्टियों का या सरकारों का संरक्षण है, या सीधे सीधे इनके नेता ही पेपर लीक करवा रहे हैं, उन्हीं का धंधा ये है। और अगर ऐसा है तो सीबीआई की जांच इसमें बेचारी क्या करेगी, सीबीआई इसमें बेचारी क्या करेगी।

से जब से मोदी सरकार आई है टोटल हमारे देश में 93 पेपर लीक हुए हैं, 93, और इनमें अधिकतर पेपर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बीजेपी की एनडीए की सरकारों में लीक हुए हैं। और अभी पिछले एक दो दिन से खबरें आई हैं, ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है इसका एपिसेंटर भी राजस्थान है, और इनमें जो दो चार लोगों के ऊपर सुई गई है वो भी बीजेपी के नेता दिखाई देते हैं। तो इससे शक तो पैदा होता है कि क्या इन सारे पेपर लीक में इनके नेता शामिल हैं या इनकी पार्टियों का या सरकारों का संरक्षण है, या सीधे सीधे इनके नेता ही पेपर लीक करवा रहे हैं, उन्हीं का धंधा ही है। और अगर ऐसा है तो सीबीआई की जांच इसमें बेचारी क्या करेगी, सीबीआई इसमें बेचारी क्या करेगी।

0: अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: क्रॉस करने की कोशिश मत करो, समझे?
1: लव स्टोरीज फेल्ड
2: नहीं बनना है मुझे जिया का पिया।
3: दुकानपुर मैन आर नॉट कट आउट फॉर मैरिज।
1: स्टार्स मूव ऑन।
3: किसी ने शादी नहीं की, डिड यू नो दैट?
4: मेन लिंक जेकी।
5: यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों में, जहाँ रेत देखते हो आप लोग लेट जाते हो।
1: And franchises disappear into nostalgia.
6: Hi, I'm Anjali.
7: I'm married. I mean, Vinay Malhotra.
1: Happy. But every once in a while, Bollywood opens an old diary. And a forgotten romance suddenly begins breathing again.
8: Ab jo gift main chahunga wo dena padega.
9: Arshu, no badmashi.